जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह में असा के वरी एक दफो सवाल नोट कराइन पांजो के वडा ऑफिसर वडा जमींदार पर उन जो पूरे सिंध में पूरे पाकिस्तान में हलन ट्रकन उन जा फोटो जरूर आन उन्होंने बी शख्सियत की बी जी निशानी है वह बई क्लासिकल फनकार भी हालो बुझाणो है। सवाल तमाम आसान है जी तकरीबन है शामिल थे एस एम एस जरिए लड़काना सेंड कंदो सेंड कंदो असाया दोस्त प्रोग्राम फेसबुक जरिए बुधन था तो असाजी आई डी आए फेसबुक की जी एफ एम 88 की आई डी आए असो पेज आए फेसबुक जो तुम ते भी पांजे सवाल जो सही जवाब मोकले सको था मोबाइल ते भी कॉल करे फोन कॉल करे तुम सवाल जो सही जवाब लिखाए सको था। असाजे स्टूडियो में मोबाइल बिल्कुल आन है तुम कॉल करे सवाल जो सही जवाब असा नोट करा सको था। असा जो नंबर है 0332-13228 जी हाँ असा नंबर तमाम आसान है 0332-13228 समझा असा जो दिलचस्प आसान सवाल असा जो ब शख्सियतूं आहिनि जिन जो पूरे पाकिस्तान में पूरे सिंध में जेके ट्रकियूं हलन पयूं उन्हनि ते उन जा फोटू आहिनि ऐं जेको आहे सो उहे ॿई वॾा क्लासिकल फनकार भी आहिनि।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: It's 10:30 AM. This time
2: है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम,
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अपने बच्चों को बचाओ के आए। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

जिया सिंह जा प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां जे इंतजार जो घड़ियों खत्म अवां दोस्तन जे नाला जिन दोस्तन भी सवाल जो सही जवाब नो आए तकरीबन तमाम दोस्तन सवाल जो सही जवाब नो आए कुछ दोस्तन उको दुको हयो आए चवंदा आहिनि त सवाल जी जेका चालीह पती हूंदी आहे हुनखे बि मञबो आहे पर असां कॉफ़ी दोस्तनि जो जेको आहे सो चालीह पती मञी आहे ॻोठ मोहल ॾिण माशी लॻे वॾनि मरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी ऐं असांजो ॻोठ असू जतोन खां मोहम्मद मूसा जतोई ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडे खां अली अकबर चांडियो ऐं महबूब अली मोरे खां ऐं असांजो सोढल लाशारी बि मोरे खां ऐं असगर अली महर घोटकी खां बख्शण बलोच पनवाकिल खां एहसान अली भुगटी कामरान अली भुगटी ॻोठ रोहल खान अब्दुल मजीद भुगटी ॻोठ नूरशाह भिटशाह खां अमीर अमर रमेश कुमार कराची खां मोहम्मद खान कुंभार हालेपुटा स्टाप पीरपुर खास खां बरकत अली जमाली बलोचिस्तान खां भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं दोस्त आहिनि हाफिज़ नईम लाइ काज़ी क़ुर्बान अली सतो पनवाकिल खां ॿारनि जी वॾी महिरबानी ऐं अली जान कोरी हमाद कॉलोनी लाड़काणे खां नओ स्टान लाड़काणे खां ज़ुल्फ़कार अली बुरड़ो जूनियर किफ़ायतला जूणी जो हुन जी वॾी महिरबानी ॻोठ ठुल जूणी जो खां ॻोठ मसूहब खां नली मीराणी ऐं नवंदरो चौक लाड़काणे खां डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो अली गुल मीराणी सखर खां रुस्तम अली पंवर ॻोठ पुनू पंवर सेवण खां आसफ अली चाचड़ लाड़काणे खां खालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई यासमीन मलिक ऐं क़ुर्बान अली ख़ासकली ॻोठ झंडो मरी खां चनेसर भेण मोरे खां फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठ आगा खान जतोई खां चवन कुमार कोहली कुनरी खां ऐं सोराब मंगरियो बकापुर खां गुलाब खान कुंभर सिकंदर अली मक्सी ॻोठ कंगन खां हाफिज़ रियाज़ कलड़ो ॻोठ फाज़ुल कलड़े खां अब्दुल गफ़ूर जतोई ॻोठ अली हसन जतोई पीरशिर खां ऐं मोहम्मद दाऊद जिस्काणी मीरपुर ख़ास खां फरमान अली खखराणी अबड़ो घोटकी खां ऐं अशफाक चांडियो ॻोठ आहे लग खेरोदर खां ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी ऐं सभिनी जी पसंदि जलाल चांडियो ऐं अव्हां जी शख़्सियत बहितरीन सुञाणप जलाल चांडियो।

जी हा सभिनि खे इन ख़ूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे पियो पंहिंजी पुॼाणी ते। हयाती बख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जुणे जोखे ॾींदा इज़त अलाह निगाहबान।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News,
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: सऊदी भाइरन सा गड बीठल आयो पाकिस्तान हुरमैन शरीफन जे हिफाजत लाए उते मौजूद आए कें भी जारियत खिलाफ सऊदी जो दिफा कंदा रहंदासी।
8: खबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 खारजी दहशत जे धमाको जा आईएसपीआर मौजूद दौरान 6 खारजी दहशतगर मारजी विया दौरान

0: चार दहशतगर्दनि खे जहन भेड़ो कयो वियो। कार्रवाई दौरान छह जवान बि शहीद थिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई। शहीद जवान क़ौम जा हीरो करार।
1: ईरान मुआदो करण चाहे थो पर हिन वक़्त मुआदे लाइ तयार न आहे। असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीका ईरान जे एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तम करे छॾी आहे। जेकॾहिं ईरान ते हमिलो न कयूं हा त ईरान एटमी हथियार ठाहे वञे हा।
0: कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारां पुलिस आफिसरनि खे तलब करण बदिरां लिखत में जवाब वठण जो फैसले ॾींहुं वारी कार्रवाई जो लिखत में हुकुम जारी करे छॾियो। एडिशनल आईजी आज़ाद खान डीआईजी उमर फारूकी खे लिखत आहे।
1: मीर जो पाणीअ जे वारे ॾाहुड अबरादरीअ जे ॿिनि ते वारे तांटियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबि डिॼणा इलाज लाइ इस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
0: खैरपुर वेझो मुसाफ़िर ट्रेन तां किरी फोत, लाश इस्पताल मुंतकिल, सुञाणप न थी सघी। पुलिस मौजूद मुसाफ़िर अलामा इक़बाल एक्सप्रेस तां किरी फोत।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते
4: चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अब महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मजूरी।
5: This program is brought to you by
6: Bank Islamani Laya, Pakistan ka

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोप्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिर्फ GFM 88 नेटवर्क दे।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

0: सजा केस जांच कमीशन पारां पुलिस आफिसरन के तलब करण बदिरां लिखत में जवाब वठणु जो लिखत जारी करे छॾियो। एडिशनल आईजी ऐं डीआईजी उमर फारूक खे लिखत में सवालनि जा जवाब ॾियण जी हिदायत।
1: कंदकोट में जस्टिस पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली ऐं धरणो। अॻवाननि चयो आहे त सिंध असांजो तारीख़ी वतन आहे, सिंध जे ख़िलाफ़ कंहिंखे बि साज़िश करण न ॾींदासीं। कंहिं बि सिंध खे टोड़ण जी साज़िश कई त मुंहुं टोड़ जवाब ॾिनो वेंदो। सिंध सिंधियुनि जी आहे ऐं हमेशा रहंदी।
0: मीरपुर साकरो वेझो पाणीअ जे वारे तां ॿिनि धुरनि में जहिड़ो 25 ॼणा ज़ख़्मी, इस्पताल मुंतकिल। वारिया ऐं ॾाहोड़ा बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में पाणी जे वारे तां जहिड़ो थियो, लठियूं इसरोटा लॻण सबबि धुरनि जा 25 ॼणा ज़ख़्मी थिया। ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ इस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
1: ऐं खैरपुर भरिसां मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस जे गोट ते चढ़ाणनि ते मोबाइल फुर लुट, 5 ॼणा खंभे गुम। वाहिद बख़्श रिंद ते नोटिस वठी फुर कराए नौजवान खे आज़ाद करायो वञे।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वा सास्की वरकवल महेरवई, जकच हम द सास्की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिला माजूरी।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो उधंदा रहो। अभी बुधो प्या, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

0: at 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki aawaz.

0: मीरपुर साकरो वेझो पाणीअ जे वारे तां ॿिन धुरियुनि में झेड़ो। 25 ॼणा ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल कया विया। वारे आहिनि दाउड़िया बिरादरी जे ॿिन धुरियुनि में पाणीअ जे वारे तां झेड़ो थियो। लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबि धुरियुनि जा 25 ॼणा ज़ख़्मी थिया। ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
1: लाड़काणे में जीए सिंध कौमी महाज़ ऐं जीए सिंध स्टूडेंट फेडरेशन जे सॾ ते डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जे मुबैना करप्शन ख़िलाफ़ रैली। अॻवाणनि चयो त डिप्टी डायरेक्टर खे 3 साल अॻु लाड़काणे रीजन जे कॉलेजेस में लेबार्टरीनि लाइ 13 करोड़ जारी कया विया, पर किथे बि सामान न आहे मिलियो। डिप्टी डायरेक्टर पैसा हड़प करे छॾिया आहिनि। जांच करे कार्रवाई कई वञे।
0: ऐं उडेरो लाल में वापारीअ खां 16 लख रुपियनि जी फुर ख़िलाफ़ एहतजाज। वापारियुनि रैली कढी थाणे अॻियां एहतजाज कयो आहे। अॻवाणनि चयो आहे त फुर जे वाकियनि सबबि वापारी बिरादरी में गड़ती पखेड़ियल आहे। पुलिस जवाबदारनि खे खुलियल छूट ॾेई छॾी आहे। फुर कयल सामान वापसि कराए बदमीअ ते ज़ाब्तो आंदो वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारीअ में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
5: हर ॿार जा नंढड़ा कदम हिक नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा 2 कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
6: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
3: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हमारी वेब .com की पेशकश।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी, नु पदे वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। अखबल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई। जकच हम द सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबन वलवत वजर मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
4: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
5: निशानो बढ़ाए वयो आहे जख्मियुनि खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे.
6: Pakistan fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
7: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठार नथो करे सघिजे. सऊदीअ जी सलामतीअ लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयार आहे. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे. कंहिं बि जारहाननि क़दमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं. पाकिस्तान उर्मिन शरीफ़नि जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे. कंहिं बि जारहियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं.
5: यमन में सरकारी फौज ऐं हुसैन जे तंज़ीम अंसारुल्लाह में झड़पूं 63 ॼणा मारिजी विया. केतिरा ई ज़ख़्मी यमनी सरकारी फौज मूजिबि अंसारुल्लाह जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो आहे. जंहिं जे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे. केतिरनि ई हंधनि तां बागी फरार थी विया आहिनि.
7: ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान मुआदो करण चाहे थो पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयार न आहे. असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो. अमेरिका ईरान जे एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तम करे छॾी आहे.

सऊदी अरब ते हमला, यूएई खुशहाली ऐं सलामती लाइ खतरो आहिनि। बोरान जो ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे। यूएई सदारती सलाहकार अनवर प्रकाशी चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ ऐं मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणु घुर्जनि।

0: फ्यूल रिलीफ पैकेज लाइ 25 अरब रुपया जारी। अहल वापेदारनि जी रक़म 48 कलाकनि अंदर पेट्रोल पंप्स खे अदा कई वेंदी। पेट्रोल वारे वज़ारत मौजूद वज़ीर आज़म जे रिलीफ प्रोग्रामनि लाइ 3 महीननि जी रक़म रखी वई आहे। पहिरें महीने लाइ 25 अरब रुपया स्टेट बैंक खे जारी कया विया आहिनि।
1: इस्लामाबाद में एहतजाज खां केर बि रोके नथो सघे। का बि ज़ाती एजेंडा नाहे। क़ौम साथ ॾिनो त हालतूं तब्दील थी वेंदियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त लेवीअ जो भत्तो ऐं IPP ख़तम कई वञे, सस्ती मानी मिलणु घुर्जे।

0: कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारां पुलिस आफिसरन के तलब करण बदिरां लिखत में जवाब वठण जो फैसलो कमीशन गुज़िरियल ॾींहं वारे कार्रवाई जो लिखत में हुकुमनामो जारी करे छॾियो। एडिशनल आईजी आज़ाद ऐं डीआईजी उमर फारूकी खे लिखत में सवालनि जा जवाब ॾियण जी हिदायत।
1: सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा। कंदकोट में जीअं सिंध क़ौमी महाज पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली कढी धरणो हयो वियो। टंडवाद में ख़ासि केली इतिहाद पारां सिंध में मुंहिंजो साह जे उनवान हेठि रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरांगो रद्द सूबनि खे हक़ ॾियण जो फ़ैसिलो, जेका बाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां बि सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तम करण जो मुतालबो।

0: फैज़गंज में पसंद जे परणे तां ॻोठ ते हथियारबंदनि जी कहा ॻोठ जुमो राजपुर में हथियारबंद कहा करे फायरिंग कई। पुलिस वाके वारे हंध पहुचण बाद चकरियूं ॻोठाणनि मूजिब नौजवान मुर्तज़ा राजपुर ऐं नेहरापुर वासण नारी हूर राजपुर पसंद जो परणो कयो हो। जोड़ो पसंद जे परणे बाद गुम आहे। नारी जे वारसन घरनि ते चढ़ाई कई आहे।
1: थुल में वनवा में वेठल नारीअ जी मुबैना अगवा जो केस दाख़िल। हक भाऊ कॉलोनी मां अगवा थियल कुंवार प्रेम चनो बाज़ियाब न थी। जवाबदार हुसैन बोड़ो कालू इसाक हबीब शोभान समेत ॿियनि ते केस दाख़िल कयो हो। वारसन पारां नारीअ खे फौरी बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो।
0: ऐं कुंडरी वेझो मुसाफ़िर कोच कल्टी 15 ॼणा ज़ख़्मी। छाछरो खां कुंडरी वेंदड़ कोच बचियल ओताक वटि कल्टी थी। ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ए हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल केतरा ही मरीज लेने टोची सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल महेरवई। जकच हम द सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular, मिट्टी जो मान
7: Pakistan fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi brothers. It should be clear that the people of Pakistan with the Saudi brothers and sisters, there should be no doubt on that.
8: सऊदी अरब की सलामत के ठा नथो करे सके सऊदी की सलामती लाय पाकिस्तान हर हद पार करण लाय तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे है त सऊदी अरब की सिक्योरिटी लाय पाकिस्तान जो अजम गैर मशरूत है। कैसा बेजारान कदमन सा सऊदी भाइरन सा गड बीठल आयो पाकिस्तान हरमैन शरीफन की हिफाजत लाय उत मौजूद है। कें बेजारियत खिलाफ सऊदी दिफा कंदा रहंदासी। यमन में सरकारी फौज ए हुसैन की तंजीम अंसारुल्लाह में झड़पू टेह जणा मारजी वया केतरा ही जख्मी। यमनी सरकारी फौज मूजिब अंसारुल्लाह के थाकन के निशानो बनाए वो है जैसे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी एम है केतरा बागी फरार थी वया। ईरान जंग बाबत वो फैसलो करो आया बीहर जंग शुरू करे ईरान के तबाह करो फैसलो भी थी सके तो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाह है ईरान मुआदो कर चाहे तो पर इन वक्त मुआदे लाए तैयार ना है। असा अड़ो मुआदो कदासी जो असा लाए बेहतर हों। अमरीका ईरान के एटमी मिजाइल सलाहियत खत्म कर छी है। सऊदी अरब ते हमला यूएई के खुशहाली खतरो के खात्मे लाय गाल सिलसिलो शुरू किया वे। यूएई के सदारती सलाहकार अनवर है त ईरानी सदर से वली अहद में माजी के विसारे अगत वे इतफाक थो है। मुस्तकबिल लाय पे कदम हमला रोकण घुर्जन। खैबर पख्तून सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा दह खारजी दहशतगर्द मारजी वया बारूदी सरिंग पाक फौज जा छह जवान भी शहीद। आईएसपीआर मौजूदान में ऑपरेशन मारजी वया हंगू में भी चक्रिन दौरान चार दहशतगर्दन के

नाम भेड़ो कयो वियो। कार्रवाई दौरान शहीद थिया सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइन ते फोर्सिस खे भेटा पेश शहीद जवान क़ौम जा हीरो करार। वज़ीर आज़म जे फ्यूल रिलीफ पैकेज लाइ 25 अरब रूपया जाल वापरींदड़नि जी रक़म 48 कलाकनि अंदरि पेट्रोल कई। पेट्रोलियम सर्वे वारी वज़ारत मूजिबि पेट्रोल जे रिलीफ प्रोग्राम लाइ 3 महीननि जी रक़म रखी वई आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी। हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक में होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक आईडी है हर छंछर का सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई। जुमो मोकल आहे। क्लिनिक

0: दीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है। इसे हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन खे पोलियो खां बचाव जा ब कतरा जरूर पियारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत खे वधाइन था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबन खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GFM 91.6

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

0: stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
1: सऊदी अरब जे सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे. सऊदीअ जी सलामतीअ लाइ पाकिस्तान हर हथ करण लाइ तयार आहे. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे. कंहिं बेजाराणनि कदमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं. पाकिस्तान हरमैन शरीफ़ जे हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे. कंहिं बेजारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ दिफ़ा कंदा रहंदासीं. यमन में सरकारी फौज ऐं हुसैन जे तंज़ीम अंसार लाइ में झड़पूं. 63 ॼणा मारिजी विया. केतिरा ई ज़ख़्मी यमनी सरकार फौज मूजिबि अंसार लाइ जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो. जंहिं जे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे. केतिरनि ई हंधनि तां बागी फरार थी विया आहिनि. ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान मुआदो करण चाहे थो, पर हिन वक़्तु मुआदे लॻंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो. अमरीका ईरान जे एटमी मिज़ाइल सलाहियत खे. सऊदी अरब ते हमला UAE जे खु़शहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो. बोहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे. UAE जे सदारती सलाहकार अनवर चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ थियो आहे. मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणो हुजण घुर्जनि. खैबर पख़्तूनख़्वा में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन. हिंदुस्तानी फितने जा 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया.

0: जजा छह जवान भी शहीद। आईएसपीआर मूजिब उत्तर वजीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान छह खारजी मारजी वया। हंगूमे विचकरन दौरान चयन दहशतगर्दन के जनम भेड़ो कयो वयो। कार्रवाई दौरान छह जवान भी शहीद थिया। सदर आसिफ जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस के भेटा पेश। शहीद जवान कौम जा हीरो करार। वजीर आजम जी फ्यूल रिलीफ पैकेज लाए 25 अरब रुपया जारी। अहल वापिंदड़न जे रकम 48 कलाक अंदर पेट्रोल पंप्स के अदा कई वेंदी। पेट्रोलियम वारे वजारत मूजिब वजीर आजम जे रिलीफ प्रोग्राम लाए 3 महीनन जी रकम रखी वई आए। पहिरें महीने लाए 25 अरब रुपया स्टेट बैंक के जारी कया विया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण की का भी जरूरत न आहे। जेकरे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
3: सऊदी जी सलामती लाए पाकिस्तान हर हाल तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे सऊदी अरब की सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अजम गैर मशरूत है। कें भी जारहाणन कदम खिलाफ सऊदी भाइरन से गड बीठल आयु पाकिस्तान शर्फियन की हिफाजत लाए उते मौजूद है। कें भी जारियत खिलाफ सऊदी जो दिफा कंदा रहंदासी। यमन में सरकारी फौज और हुसैन की तंजीम अंसारुल्लाह में झड़पू 63 जणा मारजी वया केतरा ही जख्मी। यमनी सरकारी फौज मूजिब अंसारुल्लाह के थाकन के निशानो बनायो वयो जैसे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ए माली नुकसान थियो है। केतरनी हंदन तां बागी फरार थी वया आहन। ईरान जंग बाबत वो फैसलो करो आया बीहर जंग शुरू करे ईरान के तबाह करो फैसलो भी थी सके तो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है ईरान मुआदो कर चाहे तो पर इन वक्त मुआदे लाए तैयार न है। असा अड़ो मुआदो कंदी जो असा लाए बेहतर हों। अमरीका ईरान की एटमी मिजाइल सलाहियत खत्म कर छी है। सऊदी अरब से हमला यूए की खुशहाली ए सलामती लाए खतरो आन बोहरान के खात्मे लाए गाल जो सिलसिलो शुरू कर वे। यूए की सदारती सलाहकार अनवार करगाश है तो ईरानी सदर से वली अहद की मुलाकात में माजी के विसारे अगते वधण से इतफाक थो मुस्तकबिल लाए पहरों कदम हमला रोकण होजन घुर्जे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 खारजी दहशतगर्द मारजी वाया। बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज जा 6 जवान भी शहीद। ISPR मूजिब उत्तर वजिस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 खारजी दहशतगर्दन के मारे वो अंगो में वे चक्रिन दौरान 4 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो किया। कार्रवाई दौरान 6 जवान भी शहीद थी वया। सदर आसिफ जरदारी ए वजीर आजम पारा दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से फोर्सिस के भेटा पेश शहीद जवान कौम जा हीरो करार। वजीर आजम की फ्यूल रिलीफ पैकेज लाए 25 अरब रुपया जारी। अहल वाह पेदार की रकम 48 कलाक अंदर पेट्रोल पंप के अदा कई वी। पेट्रोलियम वाली वजारत मूजिब वजीर आजम के रिलीफ प्रोग्राम लाए 3 महीन की रकम रखी वही है। पेरे महीने लाए 25 अरब रुपया स्टेट बैंक के जारी किया वा। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कत्ल केस में मकामी अदालत के कार्रवाई का रोके छो। सिंध हाईकोर्ट के केसन के सेशन कोर्ट मुंतकिल करने के फैसले खिलाफ अपील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बरुकनी बेंच बुधनी कई। वकीलन जा दलील बुधन बाद सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट के वधिक कार्रवाई

0: खां रोके छडियो। अदालत धुरन के नोटिस जारी कंदे बुधणी 13 अक्टूबर ताईं मुल्तवी करे छडी। कराचीअ में पीटीआई जो तेल अघनि में वाद ऐं सिंध में करप्शन ख़िलाफ़ सिंध असेंबलीअ अॼु गॾह गाॾनि ते एहतजाज। पीटीआई एमपीएस जो करप्शन कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान सादिया जावेद चयो आहे त पीटीआई वारा इल्ज़ाम लॻाइण खां पहिरीं गोगीअ जी करप्शन जो हिसाब ॾियनि। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा। कनकोट में जसकम पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली कढी धरणो हयो वियो। टंडो आदम में ख़ासकेली राजूनी इतिहाद पारां सिंध में मुंहिंजो साह जे उनवान सां रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरहाङो रद्द, सूबे खे हक़ ॾियण जो मुतालबो। जेकब बाद में एसयूपी पारां बि सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तम करण जो मुतालबो। कंदकोट में क़ौमी अवामी तहरीक जो समाजी तंज़ीम हैंड्स ख़िलाफ़ एहतजाज। डीसी ऑफिस आॾो धरणो। मुज़ाहिरीन जो हैंड्स ते घरनि जी तामीर लाइ मिलंदड़ पैसनि में करप्शन जो इल्ज़ाम। मुज़ाहिरीन चयो त हैंड्स सिंध पीपुल्स हाउसिंग स्कीम में करप्शन करे रही आहे। घरनि जी किस्तनि ते मुतासिरनि खां पैसा वरिता पिया वञनि, इंसाफ़ कयो वञे। अमनपुर वेझो शागिर्द खणी वेंदड़ कार्गो रक्षा लालण वाह में किरी पियो। भरपासे में मौजूद माण्हुनि शागिर्दनि खे ॿुॾण खां बचाए वरितो। रक्षा स्कूल जे घरनि ॾांहुं खणी वञी रहियो हो त ओचितो वाह में किरी पियो। 3 शागिर्द वाह में ॿुॾी विया, जिन खे पाणीअ मां कढी बचायो वियो। मेहड़ में साफ़ पाणीअ जी फराहमी न थियणु, गंदगीअ जी आज़ार, रोड रस्ता तामीर न थियण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ जमातनि जो एहतजाज। जीडीए, पीटीआई, क़ौमी अवामी तहरीक ऐं ॿियनि पार्टियुनि जे कारकुननि द्वार चौक खां घंटाघर चौक ते प्यादल मार्च कयो। अॻवाननि जो चवण हो त शहर जा बुनियादी मसला हल कया वञनि, ॿी सूरत में एहतजाज जारी रखियो वेंदो। सखर वेझो नारीअ खे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल करण जो इंकिशाफ़ केस दाख़िल। तमाचाणी थाणे ते सरकार जी फरियाद ते नारी सादिया महर जो केस दाख़िल कयो वियो। केस में नारी जे वालिद क़ुर्बान महर, ॾाॾे गुलबहार महर ऐं ज़ाहिद उर्फ राजा महर खे नामज़द कयो वियो। पुलिस मूजिब गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठ गोसण जीअ में नारी सादिया महर खे गोलियूं हणी क़तल कयो वियो हो। नारीअ खे संदसि वालिद पंहिंजे पीउ ऐं भाउ सां गॾिजी कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। ऐं कंडियारो वेझो ॻोठाणनि जो ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ सालेह राजपुर जे रहवासियुनि ज़मीन ते मुबैना कब्ज़े जी कोशिश ऐं बासतनि जे नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। ॻोठाणनि जो चवण हो त ओढाणा बिरादरी जा माण्हू ज़बरदस्ती ज़मीन ते कब्ज़ो करण चाहिनि था। नोटिस वठी बासतनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। पसूरी बहुत प्यारा सा गाना आपकी समाधों की नजर की, और बहुत से लोग इस कश्मकश में मुब्तला होते हैं कि जनाब ये आखिर पसूरी वर्ड क्या है और ये किस लिए इस गाने में शामिल किया गया कि पसूरी आखिर व्हाट्स रॉन्ग विद पसूरी। बहुत से लोग ये सोचते हैं। तो जनाब बुनियादी तौर पर ये एक पंजाबी लफ्ज है जिसे उर्दू में कश्मकश, तनाजा, मखमसे या परेशानी के लिए यूज किया जाता है और कहा जाता है, और वो

0: यकीन करें दोस्तों, यकीन करें, कभी कभी एक छोटा सा जुमला किसी का पूरा दिन बहुत बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत का दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो आप उसको लिख भेजिए, आई लव यू माय दोस्त। तो नाम हम लेते हैं छोटी पहली कॉल, देखते लाइन पर हमारे साथ कौन है, क्योंकि आप भी बड़ा वेट कर रहे हैं और हम आपको ज्यादा वेट नहीं करा सकते। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, मुझे प्यारो मिठो भा खेर असा सबरी सा घर मौजूद आहे।
1: आई हर जमा मन मेटले हो गो तो पीस बैठ मेटले हो को साफ के मन मन साला गाय काल का जला कर पर मुरा।
0: वाह वाह वाह वाह, अर्ज मेटलो साहब ता जो तो एडो वडो एड्रेस होयो, भला मा तो सडो विसरी हम
1: आई ता आज सभी खबर पर जे है डिटेल की।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल, अर्ज भा केड़ा हाल चाल है ताला? ठीक ठाक।
1: ता जी दुआओं का पाने रब पाक का लक है सा ता पे खबर कहे जब तक किया।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मुजा प्यारा भा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। तमाम भारिन जी दुआओं सा गद यो बुझायो ता अगर अज मा तमा के चवा ता तमा के मैसेज यो कॉल के आई उनके चाहो आई लव यू यार तो तुम कहें के वो लव चवंदा
1: असा भाई कैसे न चलाए पाजो ओला भी चवंदा से के कैसे न चाहते सयो के प्यार ना बाहर हो दोस्त में।
0: हां सही सही सही सही बिल्कुल बिल्कुल ता बिल्कुल पांजे पारन प्यारन बाहर रहे दोस्तन के शामिल क्यों
1: साई ता के तुम्हारी पूरी टीम जाते आवाज वाले से बाहर बिन रुबु चला सब के अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुजा प्यारा भा, केड़ो गानो बुझनो चाहयो था
1: साई? समन मुराली अब चाहयो
0: केड़ो?
1: तू भी जिदी मां भी जिदी यारी की हालत।
0: वाह वाह वाह, ये जिद ता वडी खराब गाला।
1: हां
0: सही सही सही, तो भी जिदी आयो या बस ये सादरा आयो मुंह मांगे?
1: न साईं असा जिदी ना आयो साईं, असा सबर करे ना तू तो कुछ गालाइना सबर में हले आयो ना।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तमाम घणी सुठी हैबिट आए, तमाम घणी सुठी आदत आए, तो इंसान भी या खासियत हुजन खपे तो वो तमाम घणो साबरीन भी हुए, तमाम घणो बर्दाश्त करने वालों हुए तो वो मानू हमेशा कामयाब थी।
1: साईं नंदी उम्र गुजारिश कहूं हाँ पंजा के मत
0: एग्जैक्टली तुम हर ऊंच नीच डिठी है, हर कें जो मानू जो मिजाज तुम डिठो है, हर कें आजमायो है, तरी तुम अज बिल्कुल साबरीन सब्र शुक्र से इग्नोर करने वाली शख्सियत थी आयो ना, तो हर नंढी नंढी गाल के इग्नोर कर छोड़ो जी एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, वह साबरीन मानू हमेशा जो है खुश भी रहो है, उनकी दिल भी खुश रही है हमेशा। थैंक यू अर्ज मोहम्मद भाई, पांच खास ख्याल रख जो। थैंक यू। हमारे साथ अर्ज मोहम्मद भाई जनाब, उनकी बातें बड़ी प्यारी थी कि वो ये कह रहे थे कि मां तमाम घणो साबरीन आए हैं, नंढी नंढी गालन के मां लेखन तो ही ना हैं और जो को है बहुत सारी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती है और माफ कर देना भी बहुत अच्छी बात होती है, सबर करना बहुत अच्छी बात होती है। लेते शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, खेरे साहब सबनी सा गड
1: सर सैयद इमदाद शाह बुखारी।
0: सैयद इमदाद शाह बुखारी साहब, कड़ा हाल चाल है तहजा सैयद साहब?
1: तुझा
0: बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। की हले थी जिंदगानी?
1: जिंदगानी बस वेगन वांगुर हले थी।
0: हाँ मैं छा समझा था वेगन वांगुर की मना वेगन वांगुर जी धिका धाबा खाई दी डब डब डब करे हले
1: छो
0: या तो तक भी खबर हूँ घना प्यार है, आई लव यू ऑल, तरी तो मां प्रोग्राम का नालो आई लव यू लिखे रखे आप
1: यो सही आला पर कोई भी प्यारो नोग्राम।
0: थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू इमदाद साहब। ये बताओ शमन जो गानों प्ले तो क्या आदे जी फरमाइश थे, तू भी सिद्धी मां भी सिद्धी कहीं जना तक चाहो
1: यो समन जो गानों तो सही तो हलायो पर बोल कुछ मत चाहो तो
0: केड़ा
1: काथे रहो घर काथे रहो घर पंद तो करा यार जो
0: काथे रहो गाय तो बुझाओ थोड़ो घणो बोलने में आसानी से वा चला कर माना गायण न पे तक अच्छा काथे काथे रहो
1: काफी रहो घर
0: काफी रहो
1: उधर
0: पंदा तो कराए यार। ओके यो प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश करो, मैंने जब बाद पहले जिद्दी वालों गानों प्ले कर दूं पोई हो ठीक है साहब?
1: चलो ठीक है मर्जी बस दोस्त की याद करना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: सबका प्यारे असंगा प्यारो दोस्त सरदार मोहम्मद बख्शी सबानी साहब
0: जी जी
1: रियाज जिस्कानी इमाम जिन दमरो जिथे जिथे आवाज वाले तो

0: वालेकुम अस्सलाम इमदाद साहब, तव्हांजो तमामु घणो थैंक्स सईद इमदाद साहब, असां सभिनी सां गॾु हुयो, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो आदाब। थैंक यू। हमारे साथ ही जनाब बहुत प्यारे से सैयद इमदाद रिशा साहब, और अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम आदाब।
0: हां जी, केर असां सभिनी सां गॾु कुर्बान ख़ासि खेली त कोन्हे असां सभिनी सां गॾु। ॾिसो मां तव्हांखे सुञाणे वियो आहियां।
1: बिल्कुलु छो तव्हांजा पुराणा बाज़ूक लिस्टर
0: आहिनि। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हांजो ॻाल्हाइण जो स्टाइल बि थोरो डिफरेंट आहे न, मतिलबु तमामु घणो इंट्रेस्टिंग आहे तव्हांजो ॻाल्हाइण जो बि अंदाज़ ऐं तव्हांजो जेको लहजो आहे न, उहा ख़बर पइजी वेंदी आहे त कुर्बान साहब असां सभिनी सां गॾु मौजूदु आहे। थैंक यू सो मच, तव्हां मुबारक ॾिनी। मां चयो त मुंहिंजो कहिड़ो पुटु ॼाओ
1: आहे।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच। उहा त अचानक हैरत थी न मूंखे, त वरी तव्हांजो प्रोग्राम सुठो थियो आहे। थैंक यू सो मच। कुर्बान भाई, इहो ॿुधाए कीअं हले थी ज़िंदगी तव्हांजी, कीअं थी हले मुंहिंजा जानी? तव्हां त लाजवाब करे छॾियो आदा।
1: कुझु दोस्त ॿुधनि पिया?
0: जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु।
1: काटड़ी खां गुलाम रसमी सोलंगी खालक
0: लाचारी
1: गुलाब बलोच रुस्तम पवर सभिनी
0: खे सलाम। वालेकुम अस्सलाम, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। थैंक यू। हमारे साथ है जनाब बहुत प्यारे से हमारे कुर्बान खास खली भाई। अब गाना वाना चलाने का टाइम आ चुका है जनाब, क्योंकि इसके बाद है ब्रेक, और ब्रेक हम चाहते हैं कि जनाब ब्रेक भी टाइम पे चल जाए। तो इस गाने को सुनिए, एंजॉय कीजिए, हमारे साथ रहिए।

छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़। उधंदा रहो,
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध।

0: खुदा दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: चिट्ठी शादी के साथ जरूर पढ़ता से तो पढ़ी हूँ जनाब कह दो कि वो मेरा है कहीं ये डर के वो मुझसे जुदा तो ये दुआ कि उसकी आंखों को देखा तो नहीं है कभी ये खौफ के वो खुशी मेरी बिना तो नहीं कभी ये खलिश है कि वो जमाना मुंतजर उसका कहीं ये अच्छा इन्होंने ऊपर सो मच डेडिकेशन मोहम्मद रजाक साहब आपका बहुत बहुत इशारी हमें लिख के भेजी है हम अब एक और कॉल हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम मुझे आप प्यारा भाव जानू खान खेड़ा आचारण गुलाम अब्बास भाई सफा फर्स्ट क्लास था थोड़ी रेडियो जी आवाज ओके
1: सर मुख्य क्या था
0: अच्छा अच्छा अच्छा कम कार सही लगे माशाल्लाह सॉरी
1: गुलाम अब्बास वाला
0: अच्छा गुलाम अब्बास केड़ो गाना बुझाए चाहे था गुलाम हुसैन उमरानी केड़ो गानो
1: सर मुझे यार
0: ओके ओके ओके मां सर तो क्या मुझे यार के मुझे सलाम चाहे जाए ओके अच्छी भी आ जाए ताजा सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम कह के डेडिकेट कर दो ये गानो वालेकुम असलम थैंक यू गुलाम अब्बास अभी जाने का तहां असि कॉल किया है थैंक यू सर जी जनाब गुलाम अब्बास से और बहुत प्यारे से दोस्त हमारे बीजाणु से तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है जनाब वहां आते हम बताते चले अपना नंबर 3488 हमारा नंबर है लेते हैं कॉल अस्सलाम
2: वालेकुम
0: अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप प्यार केड़ा सबनी से गडो है माशाल्लाह माशाल्लाह अभी आप ठीक ठाक आयो था मजे में आयो
2: सब टीम ठीक लगी पी
0: सफा मस्त लगी पई है असांजी टीम जबरदस्त लगी बताओ आप
2: बस तव्हां हिकु चकर इंटर वरितो आहे खंडारा सॼी
0: मां विसरी वेंदो आहियां मां छा कयां था
2: यादि कंदो कर ले यार असांखे कादर कलोड़े वारी ॻाल्हियूं यादि न हाणे तव्हां यादि करियो न
0: अच्छा अच्छा तव्हांजो कमु काई ठीकु हले थो जेको बि कयो था मंगनहार भा अच्छा इहो ॿुधायो त जेको आहे तव्हां खे हाणे गुलाम हुसैन उमरानी ॿुधायो जी जी हुकुम
2: माण्हू
0: अगरि असांखे ॿुधे पियो त असां पर्सनली तव्हां वापसि फैंस तव्हांजे सां वेलकम करणु चाहिनि था थैंक यू सो मच ओके मुंहिंजा मिठा थैंक यू सो मच जनाब हमारे साथ

0: प्यारे से कॉलर और जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। राइट मैसेज में जाइए, एसकेआर टाइप कीजिए, अपना मैसेज लिखिए और सेंड कर दीजिए 8881 पर, हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर। आप हमें फेसबुक पेज पर जाकर हमारे GFM88 नेटवर्क के पेज पर जाके भी आपने दिल की बात लिख सकते हैं और हमारे साथ चैट कर सकते हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: सबनी
0: से करता निसार
1: निसार
0: पिता भी साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है हो?
1: खैर
0: फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। पिता भी भाई बुधायो प्रोग्राम किए तो ले
1: तमाम
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर अजा अज तमाम के मुझे प्रोग्राम में कहें कि आई लव यू चवण हो जाए तो कहें के चवंदा हो?
1: पप्पू पिता भी चवनो।
0: हाँ
1: पप्पू पिता भी,
0: पप्पू पिता भी। ओके गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताओ पिता भी भाई गानो बताए तो उमरानी जो कहें देना करना चाहे हो
1: बताना।
0: अच्छा ठीक है तमाम बुधाए की कोशिश क्या तो कहें देना कहता हो
1: जी सादी पप्पू पिता भी हाजी हुसैन नवानी।
0: अच्छा ठीक ठीक थैंक यू निसार बा थैंक यू
1: थैंक यू।
0: चलते हैं जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जाने, वापस आते हैं और आपको सुनवाते हैं इस ब्रेक के बाद गुलाम हुसैन इमरानी।
2: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग। तहजीब व सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GFM 88 की आवाज।
2: GFM 88।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
5: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي، خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خولي ورکوي، ځکه چې دفاعي تګ د خوبونو
6: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدر FM 91 سندھ جو آواز بدلدا رہو।
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
8: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
7: GA FM नेटवर्क
8: सिंध की आवाज।

0: जी जनाब, हमारे साथ है मेहर साहब फ्रॉम नोशी। हमें कॉल कर सकते हैं जनाब, कहीं चाप सुन रहे हैं 03333488 एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह
0: वबरकातहू।
1: तुम्हारे सत्र
0: बढ़िया वाह वाह वाह जबरदस्त। क्या
1: भाई सजन चाचर
0: सजन चाचर साहब कड़ा हाल चाल है? तुम नालो इलाही प्यारे हुआ सजन चाचर साहब, तुम्हारी शायरी तमाम घनी प्यारी हुई। उम्मीद है तुम बिल्कुल एक जबरदस्त परफेक्ट इंसान हूं। जी जी जी सिर रखते
1: अपना गिरा होवे
0: वाह वाह वाह सजना दी बाह होवे तो एक गाना कहें दे भला क्योंकि कहें जना थे करना। अच्छा ठीक है सजन भाई माता के न्यू थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत प्यार चाचा आपको सुनवाते हैं। फॉरेस्ट रुगोडू जान डोह जानी नसीबन जना है। इन्हें गाने के बदो खोर सारा जाए क्यों

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी जो चवण हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का पोए कें भी सूरत में मुल्क के गादी वाले शहर ते काह नथी करे सकजे। कें अदालती फैसले की भंज कड़ी कई तोहिन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कई वेंदी। जवानन के बुधाए छो है इं न थन्द तो गोलियो हलन तमा खामोश थी वेही रहो। कोहाट में दहशतगर्दी जो अफसोसनाक वाक्य पेश आयो है।

0: मां के नथो सूहे त एक तरफ शहीदन जा जनाजा खजन ए बे पासे धरणन जी तैयारी कयो। अज शहर कोहाट में दहशतगर्दन जो पुलिस लाइन्स जी मस्जिद ते आपघाती हमलो ए फायरिंग, पंज पुलिस अहलकारन समेत 16 शहरी शहीद, 57 जख्मी। पुलिस जी जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारजी वया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा चयो आहे त दहशतगर्दन जा हमला हौसला घटाए नथा सघनि। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, खैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ऐं ॿियनि पारां दहशतगर्द हमले जी मज़म्मत, ज़ख़्मियुनि खे तिबी सहूलियतूं ॾियण जी हिदायत।
1: With the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physical. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
0: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे। सऊदीअ जी सलामतीअ लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयार आहे। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारहाणनि कदमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान हरमैन शरीफ़ जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे। कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं। यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसैन जी तंज़ीम अंसारुल्लाह में झड़पूं, 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसारुल्लाह जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं जे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे। केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फरार थी विया आहिनि। ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां, ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान मुआदो करण चाहे थो, पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयार न आहे। असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो। अमरीका ईरान जी एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तम करे छॾी आहे। सऊदी अरब ते हमला यूएई जी खुशहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि। बोहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे। यूएई जी सदारती सलाहकार अनवर करगाश चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते तफ़ाक़ थियो। मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकण हुजणु घुर्जे। खैबर पख़्तूनख़्वा में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, हिन्दुस्तानी फितने जा 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। बारूदी सुरंग जे धमाके में पाक फ़ौज जा 6 जवान बि शहीद। आईएसपीआर मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 ख़ारजी दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। हंगू में बि चकरियुनि दौरान 4 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। कार्रवाइनि दौरान 6 जवान शहीद थिया। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश। वज़ीर आज़म जे फ्यूल रिलीफ पैकेज लाइ 25 अरब रूपया जारी। अहल वाफ़ेदारनि जी रक़म 48 कलाकनि अंदर पेट्रोल पंप खे अदा कई वेंदी। पेट्रोलियम वारी वज़ारत मूजिबि वज़ीर आज़म जे रिलीफ प्रोग्राम लाइ 3 महीननि जी रक़म रखी वई आहे। पहिरें महीने लाइ 25 अरब रूपया स्टेट बैंक खे जारी कया विया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कतल केस में मकामी अदालत खे कार्रवाईअ खां रोके छॾियो। सिंध हाई कोर्ट जे केस खे सेशन कोर्ट मुंतकिल करण जे फैसले खिलाफ़ अपील ते ॿुधणी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ॿुधणी कई। वकीलनि जा दलील ॿुधण बाद सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट खे वधीक कार्रवाई खां रोके छॾियो। अदालत धुरन खे नोटिस जारी कंदे ॿुधणी 13 अक्टूबर ते मुलतवी करे छॾी। कराचीअ में पीटीआई जो तेल अघनि में वाद ऐं सिंध में करप्शन ख़िलाफ़ सिंध असेंबली आॾो गॾह गाॾनि ते एहतजाज। पीटीआई एमपीएस जो करप्शन कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो बि मुतालबो। सिंध हुकूमत जी तर्जमान सादिया जावेद चयो आहे त पीटीआई वारा इल्ज़ाम लॻाइण खां पहिरीं गोगीअ जी करप्शन जो हिसाब ॾियनि। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा। कंदकोट में जसकम पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली कढी धरणो हयो वियो। चंडो आतम में बे खास के लिए राजूनी इतिहाद पारा सिंध में मुझो साह जी सदे हेठ रैली कढ़ी वही सिंध जो इम्कानी विरांगो रद्द सूबे के हक देने जो मुतालबो जेकब बाद में एसयूपी पारा बे सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ एहतजाज कयो वियो मुजाहिरीन पारा सिंध खिलाफ साजिशूं खत्म करण जो मुतालबो सखर वेझो नारीअ खे कारण इल्ज़ाम हेठ क़तल करण जो इंकशाफ़ केस दाख़िल तमाचाणी थाणे ते सरकार जी फिरियाद ते नारी सादिया महर जो क़तल केस दाख़िल कयो वियो केस में नारी जे वालिद क़ुर्बान महर ॾाॾे गुलबहार महर ऐं ज़ाहिद उर्फ राजा महर खे नामज़द कयो वियो पुलिस मूजिब गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठ गोसड़ जीअ में नारी सादिया महर खे गोलियूं हणी क़तल कयो वियो हो नारी खे संदसि वालिद ॾाॾे ऐं चाचे कारण इल्ज़ाम हेठ क़तल कयो केस दाख़िल थियण बाद वाके जी वधीक जाच कई पई वञे टंडो आदम में हिकु हफ़्तो अॻु नींगर जो लाश मिलण वारे मामले में नओं मोड़ साम्हूं अची वियो नींगर जे क़तल थियण जो इंकशाफ़ कहेरी पाड़े मां नींगर आमिर कहेरीअ जो गोली लॻल लाश हथायो हो मक़तूल जे भाउ जावेद कहेरीअ जी फरियाद ते शेर मोहम्मद कहेरी ऐं सागर कहेरी ख़िलाफ़ केस दाख़िल पुलिस ॿिन्ही जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो रतोदेरो में गुज़िरियल ॾींहुं कार वटि वरी वाके जो केस दाख़िल चेक पंजनि हिरासत मां वरितल ॿिनि औरतुनि मां हिकु ज़ीनत मलाह जवाबदारनि ते इल्ज़ाम लॻायो औरत बयान ॾिनो त ज़ेबुल गडाणी सेवण शरीफ़ जिन ते लजालट जो ॾिनो त ज़ेबुल गडाणी सेवण शरीफ़ जे दरगाह ते नशो ॾेई खे औरत खे वारसनि हवाले करण जो हुकुम टंडो आदम में ॿिन्ही लोड शेडिंग ख़िलाफ़ रहवासियुनि पारां एहतजाज अलायार ॻोठ ऐं अहमदाबाद जे रहवासियुनि प्रेस क्लब आॾो मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई अॻवाननि चयो त हथरादू लोड शेडिंग ऐं वाधू बिल उमाणे परेशान कयो पियो वञे लोड शेडिंग ख़तम कई वञे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
4: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथी क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सतीक खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770
5: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो

0: सिंह नेता चंद हा एक्जेक्टली छो त तव्हांजी आवाज़ सफ़ा कॾहिं मथे थी वञे कॾहिं सफ़ा हेठि थी वञे.
1: हलो हलो
0: जी जी मामदीन भाई हाणे त अचे थी.
1: हा मुंहिंजो नेटवर्क तमामु इशू आहे. तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधा नेटवर्क
0: वाह वाह वाह वाह इमामदीन साहब तव्हां त वॾी तारीफ़ करे छॾी आहे. थैंक यू सो मच. तव्हां पाण प्यारा आहियो इन लाइ तव्हांखे प्रोग्राम बि प्यारो लॻंदो आहे. वाह वाह वाह वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त. अगरि इहो गानो थोरो वधीक वॾो थी वञे हा त मां चांहि बि पी छॾियां छो त मां तव्हांजे हिन गाने में बिस्किट खाए छॾियां. मूंखे चांहि मिली वियो. वालेकुम असलाम. तव्हांजी सुरीली आवाज़ असां ॿुधीसीं तमामु घणी. तव्हांजी प्यारी आवाज़ हुई. तव्हांजा सलाम बि पहुची विया आहिनि. थैंक यू सो मच. पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो. अदाब. थैंक यू. हमारे साथ है जनाब इमामदीन भमरू साहब और इनके गाने के वजह से मैंने बिस्किट खा लिया अपना और चाय मेरे पास पड़ी है. मैं चुस्कियां ले लेकर पीऊंगा. आप भी चाय पीजिए क्योंकि शाम का टाइम है. दोस्तों के साथ अगर आप चाय नहीं पियेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: केरा सा सबनी सा गड मेरा पुरखा तुफैल तुफैल शर खुर्शेद खुर्शेद ओके खुर्शेद भाई कहड़ा हाल चाल है. ठीक ठाक आयो.
2: दुआओं अल्हम्दुलिल्लाह
0: फर्स्ट क्लास. तो तुम यू बुधा आज भला इतना सीरियस छो आयो
2: जी.
0: आज भला इतना सीरियस छो आयो.
2: मैं सीरियस बना
0: है. सीरियस ना आयो. सही सही मजे में ना ये गलायो ना जोश में अची करे खबर पे था खुर्शेद भाई आसान सबनी सागर.
2: जी जी जी
0: आई मेहरापुर वाला सब कहड़े हालन में आयो. हा असांजो प्रोग्राम जेको आहे मेहरापुर वारा सही हलाईंदा आहिनि टाइम ते हलाईंदा आहिनि. हा उहे चवंदा आहिनि महबूब त मालिक आहिनि को हिसाब हुननि सां कोन्हे. मेहरापुर वारा मुंहिंजो प्रोग्राम ॿ कलाक पूरो हलाईंदा कयो था. बसि हाणे मां हिन ते ॾंढ विझंदुमि. हा खुर्शीद भाई ॿुधाए छा कंदा आहियो.
2: सर तव्हांखे ॿुधायो पहिरां मां कारीगर आहियां.
0: अच्छा माशाला माशाला माशाला ज़बरदस्त. तव्हांजो कमु कार सही थो हले.
2: शुक्र ख़ुदा अलहमदुल्ला.
0: ऐं चांहि बांहि पीती अथव दोस्तनि सां गॾु घर में वेही करे या न अञा ताईं. सेम टू यू. मां सुबुह जो पीअंदो आहियां सिर्फ़. अगरि एफ एम अचां या किथे वञा त पोइ पीअण अथव न त मां सिर्फ़ सुबुह जो पीअंदो आहियां बसि. खुर्शेद भाई इहो ॿुधायो गानो थो हलायां ज़बरदस्त पिपला थी छांव हिकिड़े अदे जी फरमाइश आई हुई त कंहिंजे लाइ था करणु चाहियो.

जी जनाब वेलकम बैक। बहुत प्यारा सा गाना आपके समातों की नजर किया हमने और आपने यकीन इस गाने को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान में तेजी से जो है खत्म होने वाली और बहुत जगहों पे सर उठाने वाली बोरी जो है बीमारी पोलियो की। बिल्कुल जनाब पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है 21-27 सितंबर, जिसको खत्म करने के लिए हमारी पूरी टीमें जो है तनदही के साथ काम कर रही है, गली कोनों में अपशानी से जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं ताकि इस रूजी बीमारी से तमाम बच्चों को निजात मिल सके। पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे की जानिब नुमाया पेशरफ्त की है और 1994 में कौमी प्रोग्राम के आगाज के बाद मुल्क में रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस में 99.8% कमी आई है। तो जनाब 2026 में अब तक पोलियो के 4 केसेस सामने आए हैं, जिनमें 3 खैबर पख्तूनख्वा और 1 सिंध से हैं। ये सूरत हाल पोलियो वैक्सीनेशन और निगरानी का अमल मुसलसल जारी रखने की जरूरत को वाजह करती है। 21 से 27 सितंबर तक जारी रहने वाली डेली कौमी पोलियो मुहिम में 115 मुंतखब हाई रिस्क जो है अजला के तकरीबन 3 करोड़ साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे। ये मुहिम अफगानिस्तान के साथ हम आहंगी में मुनक्किद की जा रही है ताकि सरहद पार पोलियो वायरस की मुंतकली के खतरे को कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों को मजीद मुअसर बनाया जा सके। ये मुहिम अफगानिस्तान के साथ हमांगी के लिए जो है वो की जा रही है और 2026 में अब तक 2 कौमी और 1 जेली कौमी पोलियो मुहिम मुनक्किद की जा चुकी है। सितंबर की मुहिम का मकसद बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त को मजीद मजबूत बनाना, उन्हें इजाफी तहफ़ फराहम करना और वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों तक दोबारा रसाई हासिल करना है। सितंबर की पोलियो मुहिम के दौरान 2,73,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। खासतौर पर वैक्सीन से महरूम रह जाने वाली जो डोज है, दूर दराज इलाकों में रहने वाले और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाले बच्चों तक रसाई पर तवज्जो दी जाएगी और खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। 5 साल से कम उम्र बच्चे को, हर बच्चे को पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाए जाएंगे। इससे पहले भी पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके होंगे, जिनको पोलियो वैक्सीन की हर इजाफी खुराक बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त को मजीद मजबूत करती है और इसे पोलियो से बेहतर तहफ़ फराहम करती है। माहौलियाती निगरानी के नतायज में बेहतरी आई है और जनवरी से अगस्त 2025 के दौरान 469 मस्बत माहौलियाती जो है नमूने सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 2026 में ये तादाद कम होकर 129 रह गई है, जो 72.5% कमी को जाहिर कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जनाब हमारी टीम इतनी तंदही से और इतनी जान पहचानी से काम कर रही है कि जनाब अब वो उसका जो रेशियो है बीमारी का वो बहुत कम और जो उसका कहीं पर जाहिर हो रही है तो वो बहुत कम नमूने देखने में आ रहे हैं। पोलियो वायरस की मौजूदगी वाले अजला की तादाद में भी कमी आई है। 2026 में अब तक 35 अजला से मस्बत माहौलियाती नमूने सामने आए हैं, जबकि 2025 में यह तादाद 82 अजला थी। इस मकसद के मुसलसल वैक्सीनेशन, मजबूत निगरानी और बरवक्त इकदामात का तसलसल बरकरार रखना जरूरी है। अवाम का तआवुन पोलियो के खात्मे के लिए नहीं, वालदेन और बच्चों की देखभाल करने और आने वाले अफराद वैक्सीनेशन टीमों से तआवुन करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को हर मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलाए जाएंगे। तो कोशिश करें कि इस मूजी मर्ज से अपने बच्चों की जान छुड़वाएं, उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं, क्योंकि जनाब ये बहुत मूजी मर्ज है जिससे हमारी नई नस्ल को बचना है, हमारे आने वाली नस्लों को बचना है और जनाब ताकि हमारी नई नस्ल, आने वाली नस्ल जो है वो भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाए। तो जनाब इस वक्त टाइम हुआ चाहता है।

0: एक अदद ब्रेक का हम चलते हैं, एक अदद ब्रेक की जानिब। आप हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे शो को जिसका नाम है आई लव यू ऑल।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़। ॿुधंदा रहो, ॿुधंदा रहो।
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
7: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
6: जीए FM नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंकी आवाज।

0: बेओ ठीक ठाक जमालदीन भाइयों साहब ठीक ठाक है हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आता
0: हूँ। बस हाँ जी सब ठीक ठाक था, बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है हो? माँ गानो हलाय चुको है यहाँ, तेरा मेरा है प्यार अमर हिकड़े अदे जी फरमाइश है हबीबुल्ला थे बोजी कैंजे नाला थे करना चाहे हो जी जी। वालेकुम अस्सलाम जमालदीन भाई साहब, तमाम तमाम गुण थैंक्स अस प्ले कर चुका हूं, तमाम गुण हिट नंबर इश्क मुर्शिद जो ओएसटी है एंड हिट नंबर के बदो आई खोर सारो एंजॉय कियो।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराय तो जवाबित लागू.

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई औखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल माहिरवई जकच हम दा सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: मेजलन गेस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन की पथरी बवासीर बेऔलादी वारन जुक
1: सुतडे मुजी नोह के ओलादी कोनती थिए
2: भेण डॉक्टर

देखिए जनाब, हम आपके साथ हैं तो आपके गड़बड़ेशन की तबीयत गड़बड़ेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं जनाब कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग लग जाते हैं मत्थे में तो कि आप भी कहते हैं कि अरे सडनली हो क्या रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप कभी भी परेशान मत हो, चाहे कैसे भी क्यों लोग आपके मत्थे ना लग जाएं, आप उनको अपनी समझदारी से हैंडल कीजिएगा। तो जनाब अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ चुके हैं और एक बात दिल में रख लीजिए कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी खुशी की जरूरत नहीं होती है, कभी एक अच्छा इंसान, एक खूबसूरत बात और एक सच्ची मुस्कुराहट भी काफी होती है। इसीलिए मुस्कुराइए, माफ कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए और अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, क्योंकि मोहब्बत जब दिल में रह जाए तो सिर्फ एहसास होती है और जब लव्स बन जाए किसी की जिंदगी की खूबसूरती बन सकती है। और जनाब शाम का आखिरी गाना भी चलाएंगे, हमारे से एक दोस्त ने फरमाइश की थी कि अहमद मुगल का गाना चलाएं, तो हम बिल्कुल अहमद मुगल का गाना भी चलाएंगे और वो गाना उन तमाम लोगों के नाम जो मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, दोस्ती को अहम समझते हैं और जिंदगी को मुस्कुराकर जीना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की शाम हमने अपने तमाम दोस्तों के नाम की और आई लव यू ऑल जो है आपका अपना प्रोग्राम है और सबने अपनी अपनी मोहब्बत का, अपने चाहत का, अपने खलूस का इजहार किया हमारे साथ। तो जनाब मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है किसी की बात सुन लेना, किसी को माफ कर देना, किसी की मदद कर देना, किसी का हौसला बन जाना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना। तो आज रात सोने से पहले अपनी जिंदगी के किसी एक खूबसूरत इंसान को ये जरूर कहिएगा कि तुम मेरी जिंदगी हो। बिल्कुल जनाब, अब आप सुन रहे हैं GFM 88, ये था आपका अपना प्रोग्राम आई लव यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का खास ख्याल रखिए और मोहब्बतें बांटते रहिए और GFM 88 सुनते रहिए, क्योंकि जहां आवाज सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचती है। तो जनाब दिल की आवाज के साथ हम शेयर करते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना, इस गाने को सुनिएगा और अशफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत, रखिए अपना बहुत बहुत बहुत बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे तक का वादा है आपसे मिलने के लिए, नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: तो करे सकजे सऊदी जी सलामती लाए पाकिस्तान हर हद पार करण लाए तैयार आहे डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे चयो तो सऊदी अरब की सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे कें भी जारहाणन कदमन खिलाफ सऊदी भाईरन सा गड बीठल आयो पाकिस्तान हरमैन शरफेन की हिफाजत लाए उते मौजूद आहे कें भी जारियत खिलाफ सऊदी जो दिफा कंदा रहंदासी यमन में सरकारी फौज और हुसैन की तंजीम अंसारुल्लाह में झड़पू 63 जना मारी वया केतरा ही जख्मी यमनी सरकारी फौज मूजिब अंसारुल्लाह के थाकन के निशानो बनाए वो है जैसे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ए माली नुकसान थो केतर ही हंधन ता बागी फरार थी वया है।

ईरान जंग बाबत वो फैसलो करण वो अया बीहर जंग शुरू करे ईरान के तबाह करण वो फैसलो भी थी सके तो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो ईरान मुआदो कर चाहे तो पर इन वक्त मुआदे लाय तैयार न है। असा अड़ो मुआदो कदी जो असा लाय बेहतर हों। अमरीका ईरान की एटमी मिजाइल सलाहियत खत्म कर छी है। सऊदी अरब से हमला यूए की खुशहाली ए सलामती लाय खतरो आहिन। बहरान के खात्मे लाय गालन जो सिलसिलो शुरू कयो वञे। यूए के सदारती सलाहकार

0: जो हमारे सरों पे मुसलत है 547 वाली, हम इसको नहीं मानते। ये हमने आज एक मुनफरिद एहतजाज किया है कि हम असेंबली में पीपल्स पार्टी बन गई है, ये हमें अंदर नहीं छोड़े। हम बिल्कुल आवाम अपोर्ट नहीं कर सकती है, ना मंजूर ना मंजूर।
1: तेलागन में वाद है सिंध में करप्शन खिलाफ पीटीआई जा असेंबली मेंबर से एहतजाज। तेलागन में वाद है सिंध में करप्शन खिलाफ पीटीआई जा असेंबली मेंबर से एहतजाज तौर गढ़ गार्डन ते चढ़ी पोता। करप्शन कंदड़न खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह चयो तो पीटीआई वारा पांजन इलाकन मां लैंड क्रूजर ए बिन लग्जरी गार्डन ते चढ़ी आया। सिंध असेंबली वेझो रुगो फोटो सेशन लाए गढ़ गार्डन आया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा ॾह खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। बारूदी सुरंग जे धमाके में पाक फौज जा 6 जवान भी शहीद थी विया।

सरबराई में बरकनी फैसले खिलाफ अपील ते बुधनी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराई में बरकनी बेंच बुधनी कई। अदालत धुरन के नोटिस जारी कर बुधनी 13 अक्टूबर तक मुलतवी करी छी।

0: सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा। कनकोट में जसकम पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली कढी धरणो हयो वियो। टंडो आदम में ख़ासकेली राजूणी इतिहाद पारां सिंध में मुंहिंजो साह जे सिरे हेठि रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरहाङो रद, सूबे खे हक़ ॾियण जो मुतालबो। जेकबाबाद में SUP पारां बि सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरनि पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तम करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम ईडी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जब कतरा जरूर प्यारो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय
0: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
3: इस्लामिक प्रोटेस्ट को हर सूरत में रोकना है। ये जो जलवार करने वाली जत्थे, इसमें फर्क होता है। बाद हर तरह से इकट्ठे होकर आना, ये एक भी अला ना रहे तो इसके जो इसके हाल है, हमारी इकॉनमी का नुकसान है। सबके सब तैयार है और हम किसी भी सूरत में एक दफा ये बदनमी नहीं फैलाने लेंगे जो बाजू में लोग फैलाते रहे।
4: घरू वजीर मोहसर एहतजाज जनाले ते इस्लामाबाद मथा हमले की इजाजत नथी दई सकजे। सोशल मीडिया ते गाल थी मानू अची रहा आहिन। मानू या चंदो जमा करण बदरां दहशतगर्दी खिलाफ जंग ते ध्यान होजन घुर्जे। कंहिंखे एहतजाज करणो आहे त पांजन इलाइकन या शहरन में करे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसर नकवी चयो त इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे फैसले खां पोइ कंहिं बि सूरत में इस्लामाबाद ते काह नथी करे सघजे। कंहिं अदालती फैसले जी भञकड़ी कई त तो हिन अदालत जी दरख्वास्त दाख़िल कई वेंदी। जवानन के बुधाए छो है तो इं न थन्द तो गोलू हलन ए तव खामोश थी वेही रहो। कुहाट में दहशतगर्दी जो अफसोसनाक वाक्य थो, तवा के नो सुहे तो एक तरफ ऐसा खजन असे धन। वफाकी सरकार लॉन्ग मार्च के नजर आडो रखन्दे इस्लामाबाद में रेड जोन सील करण जो फैसलो करे वरतो। रेड जोन डां वेंदड़ सभी पंज रस्ता मुकम्मल तौर से बंद कया वेंदा। ज़रियन मूजिब रस्तन ते कंटेनर जूं ब कतारू लगाए वडी नफरी मुकर कई वेंदी। एक्सीडेंट रेड जोन के सील करे रुगो हंगामी हालत में खोलो वेंदो। मुकाबलो एक अहलकार शहीद। न्यू बस टर्मिनल मुकाबले दौरान फायरिंग की डेवट में कांस्टेबल मोहम्मद अकरम चाचड़ शहीद थी वयो। मर्द अस्पताल मुंतकिल। एसएसपी सखर बे अस्पताल पहुंची वयो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है।
2: 91.6
3: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे कहीं भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306-244-7700।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: जीए एफएम नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस हम सब की है, के दौरान अपने बच्चों को पोलियो के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुसीबत।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो शो।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जो आवाज
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक्कस संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी
1: जिस धंधर लाल शहबाज
2: उसी खिते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज. उधर रहो.
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज. आवाज
6: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
7: Brought to you by
8: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई.

0: लोग झूठ प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट अगर आप अपने इलाके में करें, अपने शहर में करें, लेकिन इस तरह आपके पेट्रोल कैपिटल को बंद करने की प्लानिंग करना या किसी सूबे के ऊपर इस तरह जाके हमला करना ये भी किसी भी तरीके से जायज नहीं हो सकती बात। इस तरह के वाकयात के बाद वैसे भी आपको जोर नहीं देता कि एक तरफ आप शोभा के जनाजे हैं और दूसरी तरफ आप धरने के ऊपर तैयारी करें। कोई भी इसी पे बंदा बैठा हो उसका ये फर्ज है कि हमने जानो माल की तहफ़ करना है और इस्लामाबाद और अपनी टेरिटरी और इस तरह के प्रोटेस्ट को हर सूरत में रोकना है। ये जो जलवार करने वाली जत्थे इसमें फर्क होता है। बाद हर तरह से इकट्ठे होकर आना ये क्लैरिटी है कि एक भी अल्लाह ना करे जान जाती है तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं। मुल्क का नुकसान है, हमारी इकॉनमी का नुकसान है, सबके सब तैयार है और हम किसी भी सूरत में वो दंगे जो बाजू में लोग फैलाते रहे।
1: वज़ीर मोहसिन नकवी चाहे तो एहतजाज के नाले से इस्लामाबाद मथा हमले की इजाजत नथी दई सके। सोशल मीडिया से गाल थी रही है तो मखसूस कबीलन जा मानू अची रहा है। मानू या चंदो जमा करण बदरा दहशतगर्दी खिलाफ जंग ते ध्यान होजन घुर्जे। मानू या चंदो जमा करण बदरा दहशतगर्दी खिलाफ जंग ते ध्यान होजन घुर्जे। कंखे एहतजाज कदे मोहसिन नकवी वधिक चयो तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का पोए कें भी सूरत में इस्लामाबाद ते काह नथी चयो तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का पोए कें भी सूरत में इस्लामाबाद ते काह नथी करे सकजे। जवान के बुधाए छो है तो इन नींद तो गोलियो हलन तवा खामोश थी वेही रहो। कुहाट में दहशतगर्दी जो अफसोसनाक वाक्य पेश आयो, तवा के नथो सूहे तो एक तरफ शहीदन जा जनाजा खजन ए बे पासे धरणन की तैयारी कजें।

वफाकी सरकार लॉन्ग मार्च के नजर आडो रखंदे इस्लामाबाद में रेड जोन सील करण जो फैसलो करे वरतो। रेड जोन ॾांहुं वेंदड़ सभई पंज रस्ता मुकमल तौर बंद कया वेंदा। ज़रियनि मूजिब रस्तनि ते कंटेनरनि जूं ॿ ॿ कतारूं लॻाए वॾी नफ़री मुक़र कई वेंदी। एक्सटेंडेड रेड जोन खे सील करे रुगो हंगामी हालतुनि में खोलियो वेंदो।

0: with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physical. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
1: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे. सऊदीअ जी सलामतीअ लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयार आहे. डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे. कंहिं बि जारहाननि कदमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं. पाकिस्तान हरमैन शरफैन जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे. कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं. यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसैन जी तंज़ीम अंसारुल्लाह में झड़पो. 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी. यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसारुल्लाह जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं जे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे. केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फ़रार थी विया आहिनि. ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान मुआदो करण चाहे थो, पर हिन वक़्त मुआदे लाइ तयार न आहे. अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो. अमरीका ईरान जी एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तम करे छॾी आहे. सऊदी अरब ते हमला यूएई जी खुशहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि. बोहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे. यूएई जी सदारती सलाहकार अनवर करगाश

चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ थियो। मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकण हुजणु घुर्जनि। सिंध असेंबली मका मुकरमा ते ड्रोन हमले ख़िलाफ़ मज़ामती ठाहिल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटीअ जो तरमीमी बिल बि मंज़ूर। पीटीआई जे हामी मेंबर सजाद अलीअ पारां बिजली जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ ठहराउ पेश। साबिर क़ाइम ख़ानी ध्यान छिकायो नोटिस ते ॻाल्हाईंदे चयो त हैदराबाद जे इलाइक़े लतीफ़ाबाद में पीअण जे पाणी जो शदीद बुहरान आहे। सिंधु दरिया जे कप ते हुजण बावजूद रहवासी गदलो पाणी वापराइण ते मजबूर आहिनि।

0: एक मुनफरिद एहतजाज किया है कि हम असेंबली में इसी तरीके से आएंगे। पीपल्स पार्टी वालों की कांपे टांग गई है कि हमें अंदर नहीं छोड़े, हम अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल, आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती है, ना मंजूर, हम अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल, आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती है, ना मंजूर।
1: वाद ऐं सिंध में करप्शन खिलाफ़ पीटीआई जा असेंबली मेंबर्स एहतजाज तौर गॾह गाॾियुनि ते चढ़ी पहुता। करप्शन कंदड़नि खिलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त पीटीआई वारा पंहिंजनि इलाइक़नि मां लैंड क्रूज़र ऐं ॿियनि लग्ज़री गाॾियुनि ते चढ़ी आया। सिंध असेंबली वेझो रुगो फोटो सेशन लाइ गॾह गाॾियुनि ते चढ़िया। सियासत करणु घुर्जे पर ही पॉइंट स्कोरिंग जो तरीक़ो आहे। पीटीआई वारा गाॾियुनि बदिरां ख़ाली गॾहनि ते बि चढ़ी पई सघिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। बारूदी सुरंग जे धमाके में पाक फौज जा 6 जवान शहीद। आईएसपीआर मूजिब उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 खारजी दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। अंगो में बि चकरनि दौरान 4 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। कार्रवाइनि दौरान 6 जवान बि शहीद थिया। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइनि ते फोर्सेज खे भेटा पेश। शहीद जवान क़ौम जा हीरो करार। वज़ीर आज़म जी फ्यूल रिलीफ पैकेज लाइ 25 अरब रूपया जारी। अहल वाफ़ेदारनि जी रक़म 28 कलाकनि अंदर पेट्रोल पंप्स खे अदा कई वेंदी। पेट्रोलियम वारी वज़ारत मूजिब वज़ीर आज़म जे रिलीफ प्रोग्राम लाइ 3 महीननि जी रक़म रखी वई आहे। पहिरें महीने लाइ 25 अरब रूपया स्टेट बैंक खे जारी कया विया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कत्ल केस में मकामी अदालत खे कार्रवाई खां रोके छॾियो। सिंध हाई कोर्ट जी केस खे सेशन कोर्ट मुंतकिल करण जे फैसले ख़िलाफ़ अपील ते ॿुधणी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ॿुधणी कई। वकीलनि जा दलील ॿुधण बाद सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट खे वधीक कार्रवाई खां रोके छॾियो। अदालत धुरनि खे नोटिस जारी कंदे ॿुधणी 13 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ में रैलियूं ऐं धरणा। कनकोट में जसकम पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली कढी धरणो हयो वियो। टंडो आदम में ख़ासि केली राजूनी इतिहाद पारां सिंध में मुंहिंजो साह जे उनवान सां रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरहाङो रद्द, सूबे खे हक़ ॾियण जो मुतालबो। जेकबाबाद में एसयूपी पारां बि सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरनि पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तम करण जो मुतालबो।

0: बिलावल मेरा कजिन है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। ये इसका कसूर नहीं है, इसमें इनका हाथ बिल्कुल भी नहीं है। हाथ किसका है? सरदार शाह का है, जो जो लोकल नुमाइंदे हैं, जो लड़काना के नुमाइंदे हैं, उनका इसमें बड़ा हाथ है। वो करप्ट है, हम चाह रहे हैं कि वो आके टेबल पे बात करें, वो आके इनके डिमांड्स को सपोर्ट करें। मगर आपकी बात भी बिल्कुल सही है, मैं एक साल से उनके साथ हूँ, एक साल से इनका इनके मुतालबा देख रहा हूँ, बल्कि मैं डॉक्टर्स के साथ भी खड़ा हूँ, मैं SPSC वालों के साथ भी खड़ा हूँ, जो बच्चे जो अगवा हुए थे उनके भी वालदेन के साथ खड़ा हूँ। सिंध में बहुत सारे मसाइल देख रहे हैं, इससे मुझे दुख होता है।
1: सिंध जो विरहांगो थियण न डींदासीं। कराची जी हालतुनि जो जवाबु बणाए सिंध खे विरहाइण जी ॻाल्हि

0: कई वञे थी। रुगो कराची वासी न पर ॿियनि ज़िलनि जा माण्हू बि तकलीफ़ुनि में आहिनि। असांखे तालुके सतह ताईं ख़ुदमुख़्तियारी घुर्जे। जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो लाकाणे में ॻाल्हाईंदे वधीक चयो त IBA टेस्ट पास उमेदवारनि जे एहतजाज में शिरकत दौरान बिलावल चयो त बिलावल मुंहिंजो कज़न आहे ऐं साणस मोहबत आहे। बर्थन में उन जो को बि ॾोह नाहे। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह खे मुज़ाहिरनि सां ॻाल्हियूं करणु घुर्जनि। सखर जे आबाद थाणे जे हद में ॾोहारनि ऐं पुलिस विच में मुक़ाबलो। हिकु अहलकार शहीद। न्यू बस टर्मिनल वटि मुक़ाबले दौरान फायरिंग जी ॾे वटि में कांस्टेबल मोहम्मद अकरम चाचड़ शहीद थी वियो। मर्ड अस्पताल मुंतकिल। SSP सखर बि अस्पताल पहुच।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारीअ में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से सेहत जो चेकअप फीस ₹100 क्लिस्ट पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी बैंक जी नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: जो 10 बजे खां
2: सी खित्ते की आवाज, सिंध की आवाज।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारनि खे पोलियो खां बचाव जा ब कतरा ज़रूर पियारियो, छो त ये कतरा बारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: बस गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये है जो आवाज
1: है कलंदर से जुड़ा है कलंदर।
2: बनिए
1: एफएम

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: थी सघे थो। इन्हीअ करे पोलियो वर्करन जी ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾा। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान
4: हमलों की प्लानिंग करना, सुबह जो आके हमला करना, किसी भी तरीके आपको जो भी देता के एक तरफ आप सेवा के जनाजे उठाए और दूसरी तरफ आप धरने के ऊपर तैयारी करें। कोई भी इसी पे बंदा बैठा हो उसका ये फर्ज है कि हमने जानो माल की और इस्लामाबाद की और इस तरह के प्रोटेस्ट को रोकना है, इसमें फर्क होता है। बाद हर तरह से इकट्ठे होकर आना, ये क्लैरिटी है कि एक भी अल्लाह ना करे जान जाए वो लोग होंगे जो इसके और मुल्क का नुकसान, हमारी इकॉनमी का नुकसान है, इस सकते आ रहे और हम किसी भी सूरत में एक दफा ये बदमनी नहीं मामले में लोग फैलाते रहे।
5: घरू वजीर मोहसन नकवी चयो आहे त इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे फैसले खां पोइ शहर ते का नथी करे सघिजे, केर बि ग़लति फहमीअ में न रहे। इस्लामाबाद खे बंदि करण या एहतजाज जी कंदे मोहसन नकवी चयो त अदालती फैसले जी भञकड़ी थी त तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त थी वेंदी। सोशल मीडिया ते ॻाल्हि थी रही आहे त मख़सूस क़बीले तव्हां खे एहतजाज करणो आहे त पंहिंजे इलाइक़े ऐं शहर में कयो, माण्हू या चंदो जमा करण बदिरां दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ध्यानु हुजणु घुर्जे। कुहाट में दहशतगर्दीअ जो अफ़सोसनाक वाकियो थियो, तव्हां खे नथो त हिकु तरफ़ शहीदनि जा जनाज़ा खजनि तरफ़ धरणनि जी तयारी कजे।

लॉन्ग मार्च जे अॻवान लॉन्ग मार्च जे हवाले सां ईंदड़ कुझु ॾींहनि अंदर मुकमल क़ौम जे साम्हूं अची वेंदो तहरीक हवाले सां ईंदड़ कुझु ॾींहनि अंदर मुकमल क़ौम जे साम्हूं अची वेंदो तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल सभिनी पार्टी जहिद में शामिल थियण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान मर्दान में जल्द चयो त कंटेनर अमीर हाफिज़ नईमुर पाकिस्तान लाइ वधनि पयूं जो अवाम ते क़ीमत 35 महांगाई जा वफ़ाक़ी सरकार लॉन्ग मार्च रखंदे इस्लामाबाद में रेड ज़ोन सील करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। रेड ज़ोन ॾांहुं वेंदड़ सभई 5 रस्ता मुकमल तौर बंदि कया वेंदा। ज़रियनि मूजिबि रस्तनि ते कंटेनरनि जूं 2-2 क़तारूं लॻाए वॾी नफ़री मुक़र कई वेंदी। एक्सटेंडेंट रेड ज़ोन खे सील करे रुगो हंगामे में खोलियो वेंदो।

0: शरीफ चौधरी अर्ब टीवी आहे। डीजी आईएसपी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारहाणनि कदमनि खिलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान हरमैन शरफेन जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूद आहे। कंहिं बि जारियत खिलाफ़ सऊदीअ जो ज़ख़्मी सरकारी फ़ौज मौजूदु नुक़सान थियो आहे। केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फ़रार थी विया आहिनि ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान मुआदो करणु चाहे थो पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयार न आहे। अहिड़ी जेको असां लाइ बहितर हूंदो। अमरीका ईरान जी एटमी मिसाइल सलाहियत ख़तम करे
1: छॾी।
2: मटियारी के हो तो आवाज़ भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफ एम 91.6।